0: समय को साथ में जितु सुनचादी पसल
1: भूसाल पेट्रोल पंप संगे जोड़िएको डिपार्टमेंट स्टोर्स को पांच घर अगाड़ी जैसी पंद्रह तर्फ जाने बाटो में कुना को साइड में
0: विश्वासिलो भरपर्दो र आकर्षक डिजाइन का गरगहना खरीद बिक्री करने
2: पहाडको सुख सुखे दिल
3: आमा मामा कति राम्रा गीत बजेका कता राम्रा राम्रा सन्देश आएका होइन यो त साँच्चै 105.4 मेगाहर्जको रेडियो आदि खोले रहेछ क्या हो।
4: नमस्कार म देवीराम पराजुली जिरे खोर्सानीको भोक लाग्यो। तपाईँ यतिखेर सुन्दै हुनुहुन्छ आदि खोला एफएम 105.4 मेगा।

एस आधी खुला खबर को साथ में हिमाल सुनसादी पसल उच्च क्वालिटी का आकर्षक कर गहना ग्यारेटी का साथ खरीद बिक्री असल तपाईकै सुख दुख को साथी हिमाल सुनसादी पसल वालिंग बजार सैंजा